0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
1: Ayo, G-Funk. The

0: Hear more SBS Chill on the SBS Audio website and app.
1: गम बन जाती है संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार राता में वहाँ भी एक रात हुआ है। आँख उठा के देखे जब वहाँ मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

बहुत गौर से सुनिए आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक अतरंगी भूत की कहानी, कभी नहीं सुनेगी आप ऐसे कहानी। नानी के पीछे खड़ी है ये भूत, उसके बिस्तर में सो रहा है।

0: तो ये थी सिटीजनशिप टेस्ट की दूसरी कड़ी, और आप ये पूरी सीरीज़ हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ में भी सुन सकते हैं। तो आपको वहाँ पर 5 एपिसोड मिलेंगे, एक बोनस एपिसोड भी आपके लिए वहाँ पर। खैर, आगे बढ़ते हैं। ले रही हूँ एक छोटा सा अंतराल, अंतराल के उस पार लेकर के आऊँगी आपके पसंदीदा गीत, जो कि मेरे पास संदेशों में आ चुके हैं। कुमार जी मुझे बता रहे हैं कि आई गॉट माई सिटीजनशिप इन 1993 अलॉन्ग विद माई मम एंड सिस्टर, दिस वॉज बिफोर द न्यू सिटीजनशिप टेस्ट। सो I have the list of songs, बस एक छोटा सा अंतराल, फिर हाजिर होती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
1: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
2: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
3: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
1: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए, सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
4: SBS हिंदी

0: हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने sbs.com.au/hindi पर जाएं या sbs audio app डाउनलोड करें।
1: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
2: और अब ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ जानकारी SBS ऑन डिमांड से।
3: नमस्कार, मैं हूं वृषाली जैन और आपका स्वागत कर रही हूं SBS ऑन डिमांड की स्पेशल गाइड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं

0: Hits from Home.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: एक रेड करके कैसे पूरी व्यवस्था के सामने चुनौती की तरह खड़े हो जाते हैं, इसकी ये दिलचस्प पेशकश है।
3: रामेश्वर सिंह के नाम पे वारंट है।
4: गेट खोलो।
5: अंदर देख रहे हो?
3: बाहर देख रहे हो? इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं, उनसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अमीर। थरो सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के बाद रेड्स डालनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा।
6: सोडेक बोतल है, ताजा ताजा खुला है, थोड़ा कसूर रहेगा।
3: 7 साल में 49 बार ट्रांसफर हुआ है, जब तक मेरा 50वीं बार ट्रांसफर नहीं हो जाता, किशोर की आदत डाल लीजिए।
2: किसी थ्रिलर कथा को देखने का है जहां उत्कृष्ट अभिनय का प्रदर्शन किया गया है, तो संतोष एक शानदार विकल्प है। इस फिल्म में शाहना गोस्वामी संतोष नाम की एक ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर हैं जिनको अपने पुलिस वाले पति की मृत्यु के बाद ये नौकरी मिली थी। कैसे उनका ये सफर तय होता है और क्या दिलचस्प केसेस उनके राह में आते हैं, ये एक बड़ी कहानी है।
7: तेरे जैसी औरतों के लिए सरकार की एक स्कीम है जिसे आश्रित कोटा कहते हैं, मतलब के पुलिस वाले की विधवा होने के नाते तुझे रमन की नौकरी मिलेगी।
8: कॉन्स्टेबल
7: रमन के जैसे।
9: देविका पीपल, उम्र 14-15 साल, माता पिता राम पीपल रानी पीपल, लालीपुर गांव में मजदूरी करते हैं। शव कल गांव के कुएं में मिला था।
10: कैसे आया यहाँ पे?
11: लाटों ने फेंक दिया।
10: ऐसा क्यों करेंगे वो?
12: आप लोग भी हर चैनल पे छाए हुए हो, बधाई हो। हाँ, बहुत बढ़िया, डटी रहिए दीवान जी।
13: आंखें बंद कर सांस ले, सांस छोड़।
14: इस देश में दो तरह के छुआछूत हैं, एक में जिसे कोई छूना नहीं चाहता और दूसरा वो जिसे कोई छू नहीं सकता।
2: लेकिन थ्रिलर के बजाय अगर आप अपने लिए कुछ मोटिवेशनिंग ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको प्रेरणा दे सके, तो रुख कीजिए ऋतिक रोशन स्टारर सुपर 30 का। सच्ची कहानी पर आधारित बिहार के गणित प्रतिभा अनंत कुमार एक अनोखा IIT प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करते हैं जहां पैसों के आधार पर नहीं बल्कि छात्रों के हुनर के आधार पर उनकी किस्मत का फैसला होता है। और अगर माहौल को रखना चाहते हैं हल्का फुल्का, हंसने हंसाने और चटपटी कहानी से भरपूर, तो SBS ऑन डिमांड के हिंदी संग्रह में से अभय देओल और परेश रावल की एक हटके फिल्म ओए लकी लकी ओए देख सकते हैं।
15: मेरा नाम लकी है, लकी याद रखना।
16: दिल्ली की पॉश गलियों में सरेआम चोरियां बढ़ती जा रही हैं।
17: कुछ लगी है।
18: ओए लकी कुछ तो लगी है। तुम बंदी है, तू करता है टेंडर किस बात की?
19: एक दिन तेरा पता पूरी दुनिया पूछेगी।
20: ओए लकी।

तो मेरे पास कुमार जी का संदेश आया है जो मुझे बता रहे हैं कि उन्हें भी ये गीत बहुत पसंद है, सब कुछ सीखा हमने जो हमने अभी बजाया था। इसके अलावा मेरे पास एक संदेश आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें बरसात का मौसम है गीत पसंद है। अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दें तो मैं आपके लिए ला सकती हूँ, क्योंकि आपने नाम नहीं लिखा है तो मैं नहीं जानती कि संदेश किसका है। और इसी गीत के साथ वरना मैं आपसे अलविदा ले रही हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा।

0: साउथ एशियन
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है बंदा हो तो जिंदा

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के।

क्या खुद को खुदा मानते हो, क्या खुद को खुदा मानते हो। हमें मार तो दिया पर एक शायर को मारने की सजा जानते हो।

ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।

0: Bollywood.
1: I love Bollywood music.
2: Kicking the morning off the right way. An hour of the best in Bollywood hits. Starting now. It's the Bollywood Session on SBS South Asian.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: SBS South Asian.
1: Your news from here and hits from home.
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती हैं।